chan Prabhu dhanyabad. जिंदगी मन को ती काम को बंदगी एक दुई तीन चार पाँच कक्का.